0: तुमको भाभी
1: दिवकिन मस्चापकन तोंपन असवा जानतो चांच वितानो लारेक ओच फितेन गामी कुरियांग अच्छ कमी तोव मारनी फोक फरिंगा ती फोक चेक पाम नाच कराज नस कराज नारेक के ता फ्रेक चंगा तुन फोक फोच जुगान सेको फोच मेना मैं चुन लोक न सेको ची वो फाफा फो त्याको नो त्याको इस त्याको मालोंगा ची कलोन त्याव कुनी याफा वेलुन तंगा तुन फंगा प्यांग नंदाल फियावान हा स्टॉक न चिम्बा आल चिस मानगन आम फो चारन मी फंगा आम ओहच नम फिसिंग स्न बार फो जेच मे सुबिक माई फंतंबा अगजे मनम बदलाव ची मिंजान तोहच वेलुन तंगा तुन फ्रेस क्यांग फिता तकाल फिता फंका त्यावंग न तो ओफंग फोजे मकोल चेंग मलागास मानं कास चंग चिम से वार चका से चमालें क्या लोफंग मंदों चाचे मेरे हरे फो गास ता तो बे जाजा गास तेरा गास फो ओचुन मेन कर ना आचुजान तम राजंबे नि आज नुवान कुला कंग तन ननरियन चार गास चार फरा नि कांत की तंजा म्याक्च अंप फंता कुनांत फतन नि पुरो की गास कार अरो वक चवोच ती फोक फिफंगा ती फोक दोस कम नंगा से चतन जाजक के ना मलाजमेंट ओचा सा इंग ची मन्यून मंदों चाचा मरे हरे फो जातो चिमें चकाराजको
2: नरीरीरन सासने फोटन निसासन चिमफंतटन लंजन तेल लंजन लंजन फुक कुंपित नमतकन लेल कुमांगिक फो मवेस टन फ्तेवा कोनांजी के त्याकुजा त्याकु अनो त्याकुजा रियो दे त्याकु चीका सचारा नियान ट देन फिफंक त्याफंग सिफंग जंगन फ्यावानंग मंपियावक चीका के त्याकु माइता गासम जरा चीक अंगतन्या फलियांगा मारावरावु मा इता सूर कम लांजा तुंट मा मिंद्र म्यार कंगतन फाउरियांगा केचरियाकु मा अगास्याना ना देम न्याफासा गास मिदीका फेर मा मेंग तस मिदसीटंगा गासे असंद्रातु ना पेला तांग ना फराकुल चेंग चीके चुकुनी इंद्रगा गासे असमांगेकन देवुजन वाला फानी वाला चुमा पी आवं फामां परीतका
3: ए गासे
2: तुआंगम नुरुंबातु न फुंबा चीका फा आजा तुतो फा पास्का फाम तादिन वेरे ने कमाना इरेंगा आजंबिद नी तंद्राजंग तन्नो फलासा चिसिले वेंगा नंतराना के उवाउरान बालन फवानो बचानिबानी हासंग तुकुन्या नाराना के आजामाताउट फजांगा आर्निनो कोचांगा पेनो नि मांगतिंदिया न्याफे आजामेंग ट्राकाराजंग मंदुमा ट्राटा मिरे फगासी
3: याकाले
0: शोटो तुमकुला शोटो तुमकुवाफ।

0: गिलास तुम कुफा भी
1: दिवकिन मस चपकन तुम्पन असवा जान तो चांच विता नुलारेक ओच फितेन का मिकुरियां अच्छ का मितोव मार नि फोक फरिंग अति फोक चेक पम नाच कराज नस कराज नारेक के तफ्रेक चंग अतन फोक फोट जुगन सेक फोट मेना मैं चुन लोक न सेक कची वो फाफा फो त्याक वनो त्याक विस त्याक मलोंग अति कलोन त्याव कुनियाफा वेलुन तंग अतन फंगंपियां नंदाल फियावान हस तोक न चिंबा आल चिस मन गन आम फो चारन मिफंगाम ओहच नम फिसंग स्न बार फो जेच मे सुबिक माई फंतंबा अगजे मन बाद लाव चि मिंजान तोहच वेलुन तंग अतन फ्रे संख्यांग फिताकाल फित्याकन फंकत्यावंग न तो ओफंग फोजे मकोल चेंग मलागास मानं कास चंग चिम से वाचक से चमलें क्या लोफंग मंदों चाचे मेरे हरे फो गास तो बे जजा गास तेरा गास फो ओचुन मेन कर आचुजान तम राजंबे नि आज नुवान कुला कंग तन नरियन चार गास चार फर नि कांत की तंजा म्याक अम पफंता कोनांत फतन नि पुरो की गास सिकार अरो वक चवोच तिफोक फिफंगा तिफोक दोस कम नंगा से चतन जाजक के ना मलाजमेंट ओचो सा इंग ची मंगिन मंदों चाचा मरे हरे फो जातो ची मैं अच्छा कराजक
2: नरीरे रीरे न सासन फोटन नि सासन ची मफंत टन लंजन ते लंजन लंजन फो कुंपित न मत कन ले लकु मंगिक फो मावे से टन फ्टेवा को नंजी के त्याकुजा त्याकु अनो त्याकुजा रियो दे त्याकु ची के सचारा नि आन ट देन फिफंग का त्याफंग सी फंगा जंगन फ्यावान मंपियावा का ची का के त्याकु माइट गास मजारा ची agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ketsariako ma agasy ana na dia amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka gasy aza magneka devozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'n'orombato ny fombatsika fa aza totaofapasika fa mitadiny very aneka mana iragna azambidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy livegnana antaranake ovao rano balany favalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy iakale
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: रंदेश का हरे ना हम तन जरें दिया एफ मिया विची मिया अंबिव्ट मियारें ये रंजोत तुझो फंदा तुझा इस क्रीज फा फिरेने ना तेल माना ना तुम ने रंजोत तुझो रूसी ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर ना उन मादागास्कर अंत फिट संभव करा जाता नो सच्ची अंबुलेट से फनी चकी चुआ निउल्लू ना एटू आराची फनी चकी चुनू ला एटू दिया रावत तेरक ले फुम्बा फ्सेने ना टाम्जे सच्ची ना दिस माफ़ पुए जन फ़ाम पिनारा ना ना तोते तो दिया बामाना ना उल्ला याने जेन जासे मिशन जासे आसानी इलाने जन फ़ाम रूना ना ड्रोबा आज़ा उन जासे म्येच आरी म्याटिक अंफुम माइरवे कं फ़ासेरा जेन फ़ासेरा ना ना जन वे तुम याचाप्ची क्या मज़े फ़ोन जाए फ़ा मानना अरे तो पहले तनाचिक फिल फिल जासे ना पिनार ने जो तुम जो रोआ नू इपेचा निवा वं टिफ़िरेन्टी फ़ासे चिरेशा कातू करें जाए चिरेशा कातू करें जाए Fa resaka politika izay zavatra izay. Politika no resaka politika zavatra izay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa mbeny teniny General Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny Malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.